त्रिपता श्यामल संगत गुण प्रकाश। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगाश। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित्त में उद्दम। जाया हर हर जीव उपरिया, सैल पत्थर में जंत्यो पाए, ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूखे काष्ट हरिया रहाउ, जनन पिता लोक सुत बनता। कोय न किस की तारिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर। काहे मन पव करिया, उडे उडे आवे सै कोसा। तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कवन खिलावे कवन चुगावे। मन मैं सिमरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइये। तेरा अंत न पारा वरिया, राग आसा महला चौथा। सो पुरख को अंकार सत गुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हरे गम्मा या गम्मे अपार। सब त्यावें सब त्यावें तुध जी, हर सच्चे सृजन हारा। सब जीत मारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावो संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुझ बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावै हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी। से मुकत पए, जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जमकी फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ, त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी।

महला चौथा। तू करता सियार मैडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तो दे सोई हम पाई रहाओ। सब तेरी तो सबनी त्याया, जिसनु कृपा करें तन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मन मुख गवाया, तुझे आप छोड़ाया मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माँ है, तुझ बिन

की रखो शर्मा। कबे उबाच बेनती चौपे, हमारी करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपार, हमरे दुष्ट सब तुम कावो, आप हान दे मोए बचावो। सुखी बसाय मोरो परवारा, सेवक सेख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करे, सब रण को आसंगरे। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई यवर न त्याओ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन छत्र हमारे मारिये, अपहान दे मुझे उभरे, मरण काल कातरा सनवरे। हो जोसदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करो रचा, राख लियो मोय राखनहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर भिषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैन जशन उपजायो। आदवंत के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार ते सही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। सेवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रुन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृढ़ कर भूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी।

जबया करख करत हो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं। जेते बदन श्रेठ सवतार, आप अपने बोझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरियालम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आद्य नील अनाद्य संभ। ता का मोड़ो चारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन न मानत, महा मोड़ किस भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्हत न पेव। आपे अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक प्यो राव के भूपा। अंडज जेरज से तज कीने, उत्पज खान बहोर रच दीने। कहो फूर

जावे बैठा कहूं समट पयो शंकर कैठा सगरे सरिट दिखाए चंपव आज जुगा स्वरूप से अंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बारे सिख संगरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे। जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रचा होए ताए सब कला दुष्ट अरिष्ट ट्रै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाय ने हरे हो ताके ताप तन कमो हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होए दुष्ट शास हो सके न कोई। एक बार जंत में संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जन नर नाम तिहारू कहा दार दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हां दिले उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लो बचाई सवैया। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने हो। सिमरत शास्त्र वेद सब है वो भेद कहे हम एक न जाने हो श्री सपान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे हो सब तोय बखाने हो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाजवास गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां शब्दों ता गावो हरी केरा मन जनी वसाया।

दुख सब विसारण। अंगीकारियो करे तेरा कार्य सब सवारणा, सब ना गल्ला समरात सुवामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदारो, हर नाले साचे साहिबा, क्या नाही कर तेरे। करता तेरे सब किश है, जिस दिन सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही कर तेरे। साचा नाम मेरा आधारु, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिस दिया आए वड्याइया, कहे नानक सुनो संतो, शब्द तरु पे आरु, साचा नाम मेरा आधारु। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कहो, से नाम हर कह लागे, कह नानक ता सुख हुआ, तित कर अन हद वाजे। आनंद सुनो वडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुने सच्ची बाणी, संत साजन पय सरसे, पूरे गुरते जाने। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुरचरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां। थाल विच तीन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो। जे को खावे जे को पुंचै, तिसका होयो धारो, ए वास्तु तजी न जाई, नित नित राखुर तारो। तम संसार चरण लगत रिया, सब नानक ब्रह्म पसारू, श्लोक महला पंजवां। तेरा कीता जातो नाही, मैनु जो की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक ना मिले ताजीवा, तन मन थीवे हरिया। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिले।

ख्वार होए सब मिलेंगे। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

डंडौत बंदनयन कबार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ वाहिगुरु जी जो बन जांदे ना डरां जे शह प्रीत न जाए फरीदा किती जो बन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरें विशावण लेफ ए हमारा जीवना तू साहिब सचे वेख

लगभग पिछले दिनों तो की जा रही है। गुरबाणी संथ्या की क्लास गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा विखे आरंभ हो रही है, जिसकी आरंभता अज हो रही है। गुरबाणी का शुद्ध उच्चारण, गुरबाणी के विच ठहराओ या विश्राम, व्याकरणिक नियमों के मुताबिक शुद्ध उच्चारण किवें हो सकता है, इस संबंध में डिटेल दे विच इस गुरबाणी संथ्या की क्लास में चर्चा होया करेगी। तो अज तो इस क्लास की आरंभता हो रही है। तो यह संथ्या क्लास का समा रोजाना 6 से 7 बजे तक होया करेगा। तो आप जी जरूर लोड़वंद सज्जन चाहवंद सज्जन जरूर यदा लाभ लेना जी। तो इस दे नाल दी नाल अमृत संचार 13 सितंबर दिन ऐतवार सवेरे 9:30 बजे कराया जाएगा। तो अमृत विलाखी सज्जन जिहड़े अमृतपान करन दे चाहवान होण उह अपने नाम बार डैस्क दे दर्ज करवा सकते हैं। दस्तार सिखलाई हर शुक्रवार 6 बजे दस्तार सिखलाई कैंप नौजवान वीरां वल्लों लाया जाता है। दस्तारा सीखण दे चाहवान सज्जन उहदा लाभ उठा सकते हैं। तो आओ जिथे गुरबाणी कथा गुरु सवारियां पासों आप जी ने सरवण कीती है, समा है ढाडी वारां गुर इतिहास का। तो आप जी नूं ढाडी वारां गुर इतिहास नाल जोड़न के ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी बदनी कलां वाले अते उहनां दा ढाडी जथा। सरवण करिए ढाडी वारां गुर इतिहास। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

0: तैं जीवन जग सच कर जाना रहाओ। जिन जियो दिया सूरज कंबरावे, सब कट पीतर हाट चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ न सवारा, सांझ पर ही दै दिस अंधियारा। कैर विदास निदान दवाना, चेतस नाही दुनिया फन खाना। जन्म सिरानो पंथ न सवारा, सांझ परी दै दिस अंधियारा। कैर विदास निदान दवाना, चेतस नाही दुनिया फन खाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार जो सत्संग जीओ, सतगुरु जी पार बख्श रहमत होई। अमृत वेले सजे दीवान दियां हासियां भरियां ने, नेतन अनुसार सहज बाणी दे पाठ सुन कीते ने। उपरंत आसकी वार दे कीतो सरवण करके विलास प्राप्त कीता। सरबत दे भले लई पंथ की चढ़ती कला, आप समूह संगतों की चढ़ती कला लई गुरु चरणा विच अरदास होई है। सतगुर ने रहमत बख्शी, अज अमृत वेले दरबार विच सिंघासन ते विराजमान, समय जो लाही फरमान मुख वाग पवित्र हुक्मनामे बख्शे शरवण कीते गए। सो बड़े प्रोग्राम अनुसार इस मावन मुखवाग की कथा विचार पाए साहब गुरु शरण सिंह जी सरवण कराउणगे। सो आओ बड़े प्यार नाल सरवण करिए। सो कल दियां क्लासां जो संथिया दे गुरबाणी संथिया दी आरंभ हो चुकियां ने। सो जिदां प्राणियां ने संथिया लैणी, उन्हां नूं बेनती कि शाम नूं 7 to 8 तक इक क्लास लगदी है, उहदे विच हाजरियां भर के आप जरूर लाहा प्राप्त करो जी। 13 सितंबर नूं 9:30 बजे सवेरे अमृत संचार हो रहे ने। अमर शकल लिए अपने नाम देने की कृपालता करनी जी। सरवण करिए अज दे मुख वाक दी कथा भाई साहब जी पासों। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम

जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, तिस राखू कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो,

तुम अपन बिरदर खाबू, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले।

सुकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अन दिन आप आप स्यों लड़ै सुरखी पांचो रखै सबै तो दूजी दृष्ट न पैसे कबै।

परे तेरे भंडारा। जिस तों दें तसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला। आखां जीवां विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखै खाए चलिए दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वढाई, आख थके कीमत न पाए। जे सब मिलके आखण पाए, वड्डा ना होवे काट ना जाए। ना यो मरे ना होवे सोग, देंदा रहे न चुके भोग। गुण हो होर नाही कोई, ना को हुआ ना को होए। जे वड आप ते वड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। खसम विसारे ते कमजात, नानक नावे बासनात। राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सत पुरखा, बिनो करो गुर पास। हम कीरे कर्म सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगाश।